पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन.

0: ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता अनेक लोको छे। अपने जोयु तो के जो अपने ईश्वरे करवाना काम अपना वडे थाय तो अपने ईश्वर छे। अहिया ए वात ने वधारे स्पष्टता थी कही के मद भाव मागता मारा स्वरूप ने अमने पामी लीधु, ईश्वरत्व ने प्राप्त करी लीधु, परमात्मा तत्व ने अमने प्राप्त कर लीधु, पोते तन्मय थई गया। मद भाव आश्रिता हा, मारा भाव ने ए पामी चुक्या छे। मद भाव मागता हा, मारा आत्मी आवी गया। क्यारे आवी गया तो के एमनी अंदर क्रमे क्रमे क्रमे क्रमे फेरफार थाय छे। कया थाय छे तो के वीत राग भय क्रोधा हा। अपने आगळ जोयुं तो के आ बधा दुश्मनो छे, राग क्रोध भय काम, आजे छे बधा एनाथी अतीत थई गया, एनाथी पर थई गया, एनाथी ऊपर पहुंची गया। एनी अंदर आ रह्यू ज नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कई नहीं रह्यू। वीत राग भय क्रोध, राग नाश पाम्यो एटले भय नाश पाम्यो, भय नाश पाम्यो एटले क्रोध नाश पाम्यो। वीत राग भय क्रोध, अने एटले एमने कोई एनी साथे कोई संबंध ज ना रह्यो, एनी अंदर कोई आसक्ति ज ना रही। अने जो एनी अंदर आसक्ति ना रही तो मनमया, तो ये मारा मय बनी गया। मन मया हा, दसमो श्लोक छे, चौथा अध्याय नो। ये कहे कि मारा मय बनी जाय छे, माम उपाश्रिता हा, मारो ज उपाश्रय लेनार बनी जाय छे। शेनाथी? ज्ञान तपसा पूता हा। पेलो वीत राग भय क्रोध गयू, मलिनता गई, पछी पवित्रता लाववानी, तो ए पवित्रता लावा माटे शू करवू पड़े? तो के ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान ना तप थी पवित्र थयेला। ज्ञान नु तप, ज्ञान प्रकाश छे, ज्ञान ज्योति छे, ज्ञान अग्नि छे। एटले अग्नि ने आपणे पावक कह्यो छे, पावन करनार। कोई पण वस्तु ने एमां नाखो एटले पवित्र थई जाय। एवा अनेक लोकोए मारापणू प्राप्त कर्यू छे। अने आज आ धर्मनु अवतार तत्वनु जे सत्व छे ते आ छे के तमे पण ईश्वरत्व प्राप्त करी शको छो। जो आ स्थितिए तमे पोतानी जातने लई जाओ तो आ एनो आखानो भावार्थ छे। तो आपणे आ जोयुं, हवे आगळ केवी रीते ए लई जाय छे ते आपणे हवे पछीना अपना प्रवाह नी अंदर जोई लईशुं। हवे पछीनी कड़ीमां
1: रेडियो बालनपुर 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर आम आपणे मानता रहीशुं गीता अमृत, सिंपल

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सब प्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जान

0: मैं तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
0: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
0: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी,
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
0: जी।
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
0: जी। यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
0: जी।
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
0: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओ ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओ वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो पीला हूं।
4: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो लाल हूं।
4: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
1: बेचारा जोजो।
4: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
0: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: बैंगनी जोजो। अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से
4: नहीं लगा। अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको,
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
3: हाँ?
5: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ तो है ना। देखो
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बढ़िया ही रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
7: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते

0: चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
1: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
0: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
2: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
0: आप तो काम करती है ना?
2: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
0: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
5: गौरमा,
0: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
5: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
0: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
5: गौरमा,
0: हाँ,
5: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
0: क्या?
5: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
0: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
6: हाँ, हम सब तैयार हैं।
2: नहीं कटने देंगे।
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
7: ये है जंगल के उपकार,
8: मिट्टी पानी और बयान,
7: मिट्टी पानी और बयान।
4: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।

0: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
1: आगे बढ़ो।
2: अरे कहाँ,
1: दो मिनट की बात में बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी, पेश की इस काम के लिए।
2: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
0: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
3: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
2: हाँ, चिपक जाएंगे।
1: तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
1: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
0: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
4: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800044055

पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

एफएम रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मित्रों, जिंदगी में हमेशा आपणे सांभळता आवीए छे कि कोई पण कार्य एकला हाथे सफल पार थतुं नथी, एटले के कोई नो साथ अथवा टेको होय ज छे। परंतु हमेशा एवी व्याख्या करी शकाय के आजूबाजू घणा बधा लोको होवा छतां पण एवा कया व्यक्तिने आपणे पसंद करवो जोईए कि ए आपणी पासे हमेशा आपणो आधार स्तंभ बनी रहे अने आपणे आम छाती ठोकीने ज्यारे सफलता प्राप्त करीए ने त्यारे कही शकीए कि ए ज मारी पासे मारी पड़खे उभो रहे छे अथवा उभी रही छे ए व्यक्ति आ छे। आ वात ने कहेवा माटे आपणे पण चूजी तो बनवुं ज पड़शे ने, पसंदगी तो जोईए। अने आ सवाल ज्यारे एक मित्रे मने पूछ्यो ने एटले मारी पासे मात्र एक नानकडुं वाक्य हतुं कि हमेशा जो कोई व्यक्ति तमने एवुं कहे कि हुं तो शून्य छुं परंतु हुं तारी पाछळ ज रहीश, एटले मारा तारी पाछळ गोठवावाना लीधे तारू मूल्यांकन हमेशा वधतुं जशे। खबर छे ने दोस्तों के शून्य कोई पण आंकड़ानी पाछळ लागे ने એટલે પછી એની કિંમત હંમેશા વધતી જ જાય છે। બસ તો આવા જ મિત્રો અને આવા જ સહારાઓ તમે શોધો ને તમને મળતા રહે એવી શુભેચ્છા સાંભળતા રહો 90.4 FM રેડિયો પાલનપુર।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

शहर आवाज इतले 91.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानू टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता आणि विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम आवाज ने वाचा आपतू एक मात्र प्लेटफॉर्म इतले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM।

शहर नो अवाज एटले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानु टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता आणि विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम आवाज ने वाचा आपतो एक मात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM।

हेलो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पे मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे दिलबर लेके आया हूँ वापस सांसों की रूहानियत दिल की धड़कन दिल की आवाज 2.0। दोस्तों जब भी हम प्यार इश्क मोहब्बत उसके बारे में सोचते हैं या फिर ये जब हमें होता है तब हम अपने आप से कोई सवाल नहीं पूछते पर हम कुछ चीजें अपने जहन में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिठा लेते।

यानी कि मैं प्यार करता हूं तो मेरा प्यार ऐसा होना चाहिए। सामने वाला जो बंदा या बंदी है जिससे आपको प्यार हो चुका है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, या फिर मैं उसके लिए ये करूंगा वो करूंगा। पर क्या जीवन में आप जब भी प्यार को महसूस करते हैं तब ये ही जरूरी है कि आप कैसे और क्या किसके साथ करें? या फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम केवल किसी इंसान के लिए प्यार या मोहब्बत जताकर अपनी जिंदगानी को इतनी सुंदर बना पाएंगे, या फिर हमें भी उस प्यार में डूबने की कोई रीजन, कोई कहानी या फिर कोई पोयम ढूंढनी पड़ेगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को रोमांटिक बना पाएंगे या फिर बनाते हैं कि नहीं, ये भी सोचना चाहिए। चलिए आज के शो पर हम कोई नई कहानी नहीं सुनते हैं या फिर नए किसी किस्से के बारे में बात नहीं करते, पर आज हम बात करेंगे क्या हम खुद प्यार में डूबने के बाद कुछ रूहानियत वाली बात या फिर अपनी लाइफ को रोमांटिक बनाते हैं या नहीं, या फिर कैसे बनाना चाहिए। इसी बात पर थोड़ी सी मीठी नोकझोंक के साथ हम चर्चा करेंगे, पर अभी वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आरजे दिलबर के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

से कहा थोड़ी देर पहले वैसे ही, क्या हम अपनी लाइफ को रोमांटिक बना सकते हैं या फिर बनाते हैं? क्या किसी और को ये महसूस होता है कि ये बंदा या बंदी प्यार में है? क्योंकि ये बहुत ही इश्क की मूड से अपनी लाइफ को जी रहा है। अगर इस बात पर गौर से सोचेंगे तो नहीं, यही जवाब आपके दिल से निकलकर ज्यादातर आएगा। क्योंकि सोचिए, आप अपने लाइफ में जो चीजें अगर प्यार हो जाने के बाद बदलने की जगह वो रोमांटिक तौर पर नहीं कर पा रहे, तो फिर सोचिए कि आपका प्यार कितना आप में बसा है। जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सबकी लाइफ में आप जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं या जिससे आपको कुछ पैसे मिलते हैं, उससे आपका प्यार वाला रिश्ता कैसा है, या फिर आप जब प्यार में पड़ते हैं या फिर उसके साथ आपका रोमांटिक मूड है कि नहीं। क्योंकि आप सोचिए, अगर ये काम, जॉब या फिर आपकी जो नौकरी है जहाँ से पैसे आने वाले हैं, वो चीज़ें बेरंग हो जाए या फिर वो आपको मिले ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपकी लाइफ में? क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और अगर पड़ता है तो उसका इम्पोर्टेंस कितना है ये जानना, यही प्यार की निशानी है। अगर आप प्यार में हैं या फिर आप रोमांटिक मूड में हैं, तो आप जो काम करते हैं उसमें भी आपकी रोमांटिज्म आनी चाहिए। जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं, तो अगर आप इश्क मिजाजी हैं तो उसमें इश्क होना चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपका मूड रोमांटिक है तो आप गाड़ी कितनी इत्मीनान से चलाएंगे। अगर आप कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, आपकी लाइफ या फिर आपकी नौकरी उस पे है, अगर आपका रोमांटिक मूड है या फिर रोमांटिज्म आप में है, तो आपका वो काम, उसमें जो लफ्ज आएंगे वो सारे रोमांटिक होंगे, और वो काम आपको बड़ा सा आनंद भी देगा, और जिसके लिए कर रहे हैं यानी आपके बॉस के लिए या फिर आपकी फर्म के लिए, तो वहां से भी आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। ये सोचकर देखिए कि आपकी लाइफ की जॉब जो है उसके लिए, उसके प्रति आपका रोमांटिक मूड या भाव है या नहीं। अगर नहीं है तो बनाकर देखिए, यही तो सच्चा प्यार है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद कुछ ऐसी ही रूहानी बातें करने के लिए 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

मेरा स्वामी या मेरा सज्जन इतना खूबसूरत है कि क्या बात करूं मैं। ये अल्फाज ज्यादातर हमें सुनने को मिलते हैं किसी भी प्यार में डूबे व्यक्ति के मुंह से, पर कभी आप या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो प्यार में है, इश्क में है, या फिर ये सोचता है कि प्यार लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, तो उसे मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को भी कुछ संवारने के बाद या संवारने से पहले निहारना चाहिए। अपने आप को देखकर अपनी खूबसूरती के बारे में भी कुछ बातें करनी चाहिए, क्योंकि दिन में सुबह उठने के बाद हमारे शास्त्र और पुराण भी कहते हैं कि आप अपनी हस्तरेखाएं देखिए, फिर आप अपना चेहरा देखिए, अपने मुंह को साफ कीजिए और उसकी आंखों में झांककर नए दिन की नई रोशनी के साथ कुछ नया करने की या फिर जो काम कर रहे हैं उसमें प्यार से, इत्मीनान से सफलता प्राप्त करने की बात को छूइए। पर ये तब हो सकता है जब आप अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को प्यार करते हो। जी हाँ, बहुत सारी खामियां हो सकती है, कहीं पे तेल है, कहीं पे मस्सा है, कहीं थोड़ी सी टेढ़ी नाक है, या फिर थोड़े से डार्क सर्कल भी है, पिंपल्स भी है, पर उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी जो दूसरों से आपके पास बेहतर है। कभी उसे तो अप्रिशिएशन कर लीजिए, कभी उसके बारे में सोच लीजिए और सोचिए कि ऊपर वाले ने क्या खूब और इत्मीनान से आपको वो वाली खूबी दी है। क्योंकि आप अगर प्यार में हैं तो आपका जर्रा जर्रा प्यार से महकना चाहिए। मीरा बाई या राधा, वो जैसे भी सजती थी, जैसी भी थी, वो केवल ही केवल कृष्ण और कान्हा को प्यार करती थी, ऐसा नहीं था। वो अपने आप को भी भक्तिमय या फिर प्रेम जिसमें भक्ति की हर बूंद भरी हुई थी, उस भाव से अपने आप को भी सजाया करती थी। कभी अपने आप को ही कृष्ण माना करती थी। यही चीज तो हमें भी अपनी जिंदगानी में लानी है कि हम अपने चेहरे से, अपनी बॉडी से भी कुछ अच्छी बातें सीखें और उसके बारे में अपने को यानी अपने दिल को एहसास कराएं। आइए ऐसी ही कुछ अपने जहन में, अपने दिल में प्यार वाली बातों का कैसे समय दर समय याद किया जा सकता है उस पे बात करेंगे। 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, कहीं जाइएगा मत, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

आपने कभी वो प्यार भुला दिया? क्योंकि आप गिनती भी अगर करते हैं तो पहला बार ये वाली बात आपके जहन में रहती ही है। और छोड़िए ये पहले प्यार वाली बात, मेरा तो ये कहना है कि आप जब प्यार करते हैं तो आपके जर्रे जर्रे से प्यार की बूंदे निकलनी चाहिए। यानी कि आपका जो लहजा है, आप किसी से बात करते हैं तो वो प्यार भरी होती है। जिससे आप प्यार करते हैं उसी से नहीं, पर आपकी सुबह से लेकर शाम तक अगर किसी से भी बात होती है तो आपको ये याद रखना है कि आपको अगर प्यार हुआ है तो प्यार दिखाना भी जरूरी है, प्यार बांटना भी जरूरी है। और यही चीज तो है, फिर आप देखिए अपनी आंखों से आपको सब कुछ प्यारमय दिखेगा। और यही फीलिंग्स आपके प्यार के एहसास के साथ दूसरों को भी जोड़ेगी, यानी आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। लोग बोलेंगे ये तो बहुत ही प्यार में पागल तो है, पर हमारे लिए भी उतना ही प्यार बयां भी करते हैं। और जब आपको किसी का भी साथ चाहिए तो सब जुड़ जाते हैं। वो कहती है ना राधा कि मुझे जंगल, पेड़, पौधे, बांसुरी, कृष्ण की कोई भी चीज ले लो या वृंदावन की रज को भी ले लो, इस सब में कान्हा जी का प्यार गुला हुआ मिलता है। यही तो बात है कि ऊपर वाला भी अगर किसी को प्यार करता है तो उसके सामने हार जाता है, उसका हो जाता है, ये नहीं कि उसको अपना बना ले। इसी बात पे हो चुका है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मैं वापिस आने वाला हूं, कहीं जाइएगा मत। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

वापिस मैं आपका स्वागत करता हूँ। सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 पर, और मैं आरजे दिलबर। हम बात कर रहे थे कि अगर प्यार हमें होता है या फिर हम प्यार के बारे में सोचते हैं तो हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए, अपने काम से प्यार करना चाहिए, अपने रिश्तों से भी प्यार करना चाहिए। ये हरगिज नहीं हो सकता कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार के लिए आप सारी दुनिया के सामने लड़ जाए, ठीक है, पर उससे पहले आप अपने रिश्तों को प्यार से मनाने की, जो आपके साथ चल रहे थे, जो आपके साथ होने का आपको एहसास दे रहे थे, जिन्होंने आपको प्यार दिया या फिर प्यार क्या है वो सिखाया, उन्हें आप एक मौका तक नहीं देते। आप क्या उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल नहीं सकते? मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आपके प्यार को वो लोग समझ पाए, 100% आपको सपोर्ट करें, पर इतना तो हो सकता है कि अब तक जब तक आप किसी प्यार में पागल होने की कगार तक नहीं पहुंचे, या फिर आपको नहीं लगा था कि मैं इनके सिवा जीना नहीं सीख पाऊंगा, तब तक अब जिनके भरोसे थे उन व्यक्तियों को, उन रिश्तों को, उनके साथ आपकी जो फीलिंग्स थी उन्हें आप साझा करते आए थे, क्या उनके पास एक मौका नहीं होना चाहिए कि वो आपके प्यार को समझने के लिए कोई थोड़ी सी भी कोशिश करें, और उस कोशिश के लिए आप उन्हें मौका दें, आप अपनी बात को रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की जनरेशन में ये ज्यादा हो रहा है कि बस हमने तो एक बार कह दिया, उन्हें मान लेना चाहिए था। कभी आपने सोचा है कि आपको भी मनाने में घंटों लगे थे उन माँ बाप को, भाई बहन को, तो आपकी बात वो भी कैसे एक ही बार में मान जाए? आपको उसको मनाने के लिए बहुत सारे रीजन और ठोस वजह देनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे प्यार ही करते हैं। आइए कुछ ऐसी बातों को और भी आगे हम जानेंगे, मानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्यार केवल करना जरूरी नहीं, उसको महसूस करना भी जरूरी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

बाद ऐसा कुछ नहीं होता। अरे चलता है यार, ये तो जानजी है, चलो बस कोई बात नहीं। गिफ्ट क्या चाहिए यार, बोल तुझे कहाँ ले जाए, इतना करके खत्म कर लेते। उसमें फीलिंग्स कहाँ पे है, उसमें प्यार कहाँ पर है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को जितना प्यार करते हैं उतना अपने रिश्तों को भी प्यार कीजिए। अपनी लाइफ में, आपके बिहेवियर में रोमांटिज्म

कष्ट दे के भी आप प्यार जता सकते हैं। प्यार में बस यही तो बात है कि मीठे दो लफ्ज और आखिर में थैंक यू, जो इजीली हम सबको चिपका देते हैं पर जिसे प्यार करते हैं उसे नहीं कहते। बोलते हैं कि प्यार में क्यों थैंक यू बोलना, अरे प्यार में थैंक यू बोलना जरूरी नहीं, उसको महसूस करना जरूरी नहीं, पर उसे एक दो बार बयां करने से आपका प्यार थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा हो जाने के बाद तो फिर आपको पता ही है रबड़ी हो जाती है और सबसे अच्छी वही तो चीज है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी मौका मिलता है तब अपने रिश्तों के साथ थोड़ा सा आप रोमांटिक रोमांटिज्म प्यार वाली फीलिंग्स उसे साझा कीजिए, उनकी केयर करते हैं वो एहसास भी दिलवाइए, तभी तो आपको अपना प्यार उसी तरीके से बहुत ही जल्द और मजबूती से मिलेगा। बात को आगे बढ़ाएंगे 90.4 मेगाहर्ट्ज पर, मैं हूँ आरजे दिलबर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

हम किसी इंसान के लिए प्यार जब इजहार करते हैं तो उसके लिए घंटों, दिनों, महीनों तक वेट करते हैं, पर किसी इंसान के साथ आपका कुछ बिगड़ जाता है और आप कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हुआ, यानी कि इजहार करने की जो प्रोसेस है उसमें एक डिस्टेंस आ जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि प्यार में ब्रेकअप यानी प्यार खत्म हो जाना ये वाली बात नहीं है, प्यार तो रहता है पर अब एक दूसरे को उस प्यार की कद्र नहीं है या फिर उसका एहसास नहीं है या फिर एहसास है तो उस प्यार के साथ में रहना मुमकिन नहीं है। छोड़िए वो चीज़ें, पर ये बात है कि अगर उसे पाने के लिए वक्त दे रहे हैं, उसके लिए घंटों, दिनों, महीनों तक आप इंतज़ार कर रहे हैं तो जब वो चीज़ें आपके पास से निकल जाती हैं, ब्रेकअप हो जाता है, तब आप लाइफ को क्यों वक्त नहीं देते? तब आप छोड़ देते हैं सारे काम, जॉब, माहौल, आसपास के जो रिश्ते हैं उनसे भी आप मुंह मोड़ लेते हैं। कभी तो बहुत सारे लोग, आज की जेन ज़ी अपने जीवन को समाप्त करने की ओर चली जाती है, समाप्त नहीं कर पाती तो मेंटल सिचुएशन में इतना खराब पोजीशन वो डाल देती है कि वहां से आगे जाना या फिर उसके बाद की जिंदगी या फिर उसके बाद उनकी लाइफ में जो व्यक्ति आता है उसके लिए वो सारी चीजें एकदम से तितर बितर बिखर जाती हैं। तो ये क्यों हो रहा है? आपकी दोहरी नीति नहीं हो सकती। यही तो मुझे कहना है कि प्यार में भी अगर आप सच्चे हैं, आपने सच्चा प्यार किया है और आपकी वजह से किसी और का दिल टूटा है या फिर आपने किसी का दिल तोड़ा है या आपका दिल किसी ने तोड़ा है, सारी चीजों में वक्त, समय, टाइम उस चीज को, उस एहसास को

थोड़ा सा जीना चाहिए, तभी तो आप अपनी लाइफ में शॉर्ट टर्म डिसीजन लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उस वक्त भी आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि प्यार जिंदगी से नहीं गया, प्यार का मायना, प्यार का जो वो नाम था, प्यार का जो वो रिश्ता था, वो उस रिश्ते में थोड़ी सी खटाश, मनमुटाव या फिर कहते हैं कि दरार आ गई। शायद वो कभी भरेगी भी नहीं, पर वो दरार दीवार पर रहेगी जब तक वो दीवार है, यानी कि आप है। तो फिर क्यों आप प्यार को वक्त और मौका नहीं देते, सोचिएगा। और सही बात लगती है तो हर बार कहीं से भी दिल दुखे, कहीं से भी आपको अपने दिल से छेड़खानी होते हुए नजर आए, तो वहां से आगे बढ़िए। समय और वक्त दीजिए, लाइफ है, उसे शॉर्ट करने की नहीं, उसे और प्यार से जीने की सोच लीजिए। फिर से मिलता हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

तो आज हम बात कर रहे हैं कि प्यार के अपने मायने, अपने किस्से और कहानी हो सकते हैं। बस किसी व्यक्ति से प्यार करना और उसके सामने अपने आप से, अपने जीवन से प्यार को हटा देना, ये सही नहीं है। चलिए एक छोटी सी बात हमारे लिसनर ने भेजी है, मानसी ने। मानसी और पारस आज मुकम्मल रिश्ते में नहीं है, जिन्हें आप आज की भाषा में कह सकते हैं कि ब्रेकअप, पर दोनों आज भी तकरीबन 10-15 साल के बाद भी मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी लाइफ की कुछ ऐसी मुश्किलियां जिन्हें लगता है कि एक दूसरे से सॉल्व हो सकती है उसके बारे में बात भी करते हैं। अब यहां पर ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है आपके ब्रेकअप के बाद आप मिले, पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर प्यार और फीलिंग्स आपके पास रहती है तो सिचुएशनल आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, परिस्थितियां साथ में ना रहने का बोल सकती है, वैसा कर सकती है, पर उसके बाद में कि आपके प्यार की इंतहा ये होनी चाहिए कि आप एक दूसरे का चेहरा भी ना देखें, या फिर एक दूसरे के लिए जब वक्त आता है मदद का तब आप मदद भी ना कर पाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब दिल किसी के लिए टूटता है तो बहुत सारी बददुआएं भी निकलती हैं, पर याद रखिएगा कि प्यार सच्चा है और दिल तोड़ने की कोशिश एक दूसरे ने नहीं की हो और सिचुएशन की वजह से आपका दिल टूटता है, आपके रिश्ते मुकम्मल नाम या रिश्ता नहीं बना पाते, तब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में प्यार को संजोए रखना यही एक बड़ी बात होनी चाहिए। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने वर्क से प्यार कीजिए, अपने रिश्तों से प्यार कीजिए और अपने जीवन में आने वाले हर वो शख्स जिसको आप सम्मान दे सकते हैं, आदर कर सकते हैं, उसका कीजिए। यही रिश्ते, यही बातें आप अगर प्यार को मानते हैं तो कर पाएंगे, और कर पाए तो याद रखिएगा लाइफ में आपका प्यार किसी न किसी मोड पर आकर आपसे ये कहेगा कि तुम्हारा प्यार इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ऊपर है। और हर एक बंदा या बंदी यही चाहता है कि मैंने जो जीवन में किया हो पर मेरी खुशियां, मेरा प्यार, मेरे रिश्ते वो सच्चे हो और उसका एहसास सामने वाले को एक ना एक दिन हो। यही तो दुनिया की रीत है और जिंदगानी की यही जीत है। इसी बात पे दोस्तों चलो फिर मैं भी अलविदा कहूंगा, एक विराम के बाद वापिस आ रहा हूं। कैसे आप मेरे साथ बातें कर पाएंगे, अपने रिस्पॉन्स दे पाएंगे उसके बारे में, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 एफएम रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन.

मस मोटा पड़कार निवांत, नानकड़ा निर्धार निवांत। दुनिया ने देखाऊ नहीं पण क्या कोई ये निरखेला अजवाड़ा ने अंधार निवात। कहानियों में भजवेला बहु अलग अलग किरदार निवात। तमें जो रहा छो वातो, वातो भी संजय।

नीचे ईंटें फेंकी। उधर भागता हुआ रीडिंग रूम की ओर चला गया। बैरिस्टर साहब समाचार पत्र पढ़ने में इतने लीन होते कि उन्हें मेरे आने की खबर तक न होती और मैं उनके पीछे खड़ा होकर समाचार पत्र का अध्ययन शुरू कर देता। बढ़ते बढ़ते ये शौक यहाँ तक बढ़ा कि बहुधा मैं बैरिस्टर साहब से पहले ही समाचार पत्र पढ़ने पहुँच जाता। बल्कि प्रायः ऐसा भी हुआ कि समाचार पत्र का पहला पन्ना मैं पढ़ रहा हूँ और वह सिनेमा के विज्ञापनों वाले पन्ने मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं न जाइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र। मैं कह रहा हूँ ओ। ईडन, आइजनहावर, बुलगानिन फिर मुलाकात करेंगे और वह कह रहे हैं आहा, हजरतगंज में दिलीप कुमार और निम्मी की नई फिल्म आ रही है। मैं कह रहा हूँ छ, सिकंदरिया की हवाई दुर्घटना में 12 मुसाफिर मर गए और वह कह रहे हैं बाप रे बाप, सोने का भाव फिर बढ़ गया है। बस इसी प्रकार हमारा यह सिलसिला चलता रहता, यहाँ तक कि मेरा मालिक ईंटे गिनकर और मिस्त्री के हवाले करके वापस आ जाता और मेरी पीठ पर जोर से एक कोड़ा मारकर मुझे ईंटे धोने के लिए ले जाता, लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे कुछ न कहते। दूसरे फेरे में जब मैं वापस आता तो वह स्वयं समाचार पत्र का अगला पन्ना उठाकर मुझे दे देते और यदि मैं पूरा पढ़ चुका होता तो भीतर लाइब्रेरी से कोई पुस्तक निकाल लाते और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते। यह जो मैं पढ़ना और बोलना सीख गया हूँ तो इसे सैयद साहब का ही चमत्कार समझिए या उनकी कृपा दृष्टि, क्योंकि सैयद साहब को समाचार पत्र पढ़ते हुए खबरों पर बहस करने और पुस्तकों को ऊंचे स्वर में पढ़ने तथा पढ़ते हुए उन पर टिप्पणी करने की बुरी आदत थी। यहाँ जिन स्थान पर वह कोठी बनवा रहे थे उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जिससे वह ऐसी बहस कर सके। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त था, बस मैं एक गधा उन्हें मिला। परंतु इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, वास्तव में वह केवल बातचीत करना चाहते थे, किसी से अपने मन की बातें कहना चाहते थे। गधे की बजाय खरगोश भी उनकी संगति में रहता तो महापंडित बन जाता। सैयद साहब मेरे प्रति बड़ा स्नेह प्रकट करते थे और प्रायः कहा करते थे, अफसोस तुम गधे हो, अगर आदमी के बच्चे होते तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता। सैयद साहब की कोई संतान न थी। खैर, करनी भगवान की यह हुई कि एक दिन सैयद करामत अली साहब की कोठी तैयार हो गई और मेरे मालिक को और मुझे भी वहाँ के काम से छुट्टी मिल गई। फिर उसी रात धब्बू कुम्हार ने ताड़ी पीकर मुझे डंडे से खूब पीटा और घर के बाहर निकाल दिया और खाने के लिए घास भी न दी। मेरा दोष यह बताया कि मैं ईंटे कम ढोता था और समाचार पत्र अधिक पढ़ता था और कहा मुझे ईंटे धोने वाला गधा चाहिए, समाचार पत्र पढ़ने वाला गधा नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र। कहीं मत जाइएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। रात भर भूखा प्यासा मैं धब्बू कुम्हार के घर के बाहर शीत में ठुठुरता रहा। मैंने निश्चय कर लिया कि एक दिन निकलते ही सैयद करामत अली साह की कोठी पर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ईंटे धोने पर नहीं तो पुस्तकें ढोने पर ही मुझे नौकर रख लीजिए। शेक्सपियर से लेकर बेढम मूजी तक मैंने प्रत्येक लेखक की पुस्तकें पढ़ी है और जो कुछ मैंने उन लेखकों के संबंध में जानता हूँ वह कोई दूसरा गधा नहीं जान सकता। मुझे पूरी आशा थी कि सैयद साहब तुरंत मुझे रख लेंगे, लेकिन भाग्य की बात देखिए कि जब मैं सैयद साहब की कोठी पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि रातों रात कोठी पर फसादियों ने हमला कर दिया। सैयद करामत अली साह को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना पड़ा। फसादियों में लाहौर के गंडासी फल विक्रेता भी थे, जिनके लाहौरी दरवाजे के बाहर फलों की बहुत बड़ी दुकान और मॉडल टाउन में एक आलीशान कोठी थी। इस हिसाब से एक आलीशान कोठी उन्हें यहाँ भी मिलनी चाहिए थी। सौ भगवान की कृपा से उन्हें सैयद करामत अली साह की नई बनाई कोठी मिल गई। जब मैं वहां पहुंचा

तो गंडासी लाइब्रेरी की समस्त पुस्तकें एक एक करके बाहर फेंक रहे थे और लाइब्रेरी को फलों से भर रहे थे। यह शेक्सपियर का सेट गया और तरबूजों का टोकरा भीतर आया। ये गालिब के दीवान बाहर फेंके गए और मलीहाबाद के आम भीतर रखे गए। ये खलील जिब्रान गए और खरबूजे आए। थोड़े समय के बाद सब पुस्तकें बाहर थी और सब फल भीतर। अफलातून के स्थान पर आलू बुखारे, सुकरात के स्थान पर सीताफल, जोस के स्थान पर जामुन, मोमिन के स्थान पर मौसम्बी, सैली के स्थान पर सहतूत, किट्स के स्थान पर ककड़िया, सुकरात के स्थान पर बादाम, कृष्णचंद्र के स्थान पर केले और लहमत के स्थान पर लीमू भरे हुए थे। पुस्तकों की यह दुर्गत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उन्हें एक एक करके उठाकर अपनी पीठ पर लादने लगा। इतने में गंडासी अपनी फलों की लाइब्रेरी से बाहर निकल आए और एक नौकर से कहने लगे, इस गधे की पीठ पर सारी पुस्तकें लाद दो और एक फेरे में न जाए तो 8-10 फेरे करके ये सब पुस्तकें एक लारी में भरकर लखनऊ ले आओ और नखास में बेच डालो। अतएव गंडासी के नौकर ने ऐसा ही किया। मैं दिन भर पुस्तकें लाद लाद कर लारी तक पहुंचाता रहा और जब शाम हो गई तो अंतिम पुस्तक की लारी भी पहुंच गई। तब कहीं गंडासी के नौकर ने मुझे छोड़ा। मेरी पीठ पर उसने जोर का एक कोड़ा जमाया और मुझे लात मार कर वहां से भगा दिया। मैंने सोचा जिस शहर में पुस्तकों तथा महापंडितों का ऐसा अनादर होता हो वह रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने वहां से प्रस्थान का संकल्प लिया। अपने शहर के दरो दीवार पर हसरत भरी निगाह डाली, घास के 2-4 तिनके तोड़कर मुंह में रखे और दिल्ली की ओर चल खड़ा हुआ। सोचा दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी भी है और कला विद्या राज्यों का राजनीति का केंद्र भी, वह किसी न किसी प्रकार गुजारा हो जाएगा। आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। कहीं मत जाइएगा, यही जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर विद आरजे अंजलि।

हेलो हाय नमस्कार वेलकम अगेन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने। उन दिनों दिल्ली चलो का नारा प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति की जुबान पर था और एक तरह से मैं भी इस नारे से प्रभावित होकर दिल्ली जा रहा था, परंतु यह मालूम न था कि रास्ते में क्या विपत्ति आएगी। रास्ते में एक स्थान पर मैंने देखा एक ढही सरहई दाढ़ी रखे हुए एक छोटी सी गठरी बगल में दबाए एक छोटे से गांव से भागकर सड़क पर आ रहा था। मैंने सहानुभूति प्रकट करते हुए उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया और तेज तेज कदमों से चलने लगा ताकि उस गांव के फसादी उसका पीछा न कर सके। और हुआ भी यही, मैं बहुत आगे निकल गया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे कारण एक निर्दोष की जान बच गई। इतने में क्या देखता हूँ कि बहुत से फसादी रास्ता रोके खड़े थे। एक फसादी ने हमारी ओर देखकर कहा, देखो इस बदमाश को, न जाने किस बिचारे का गधा चुराए ले जा रहा है। ढही ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा मगर किसी ने एक न सुनी। उसे फसादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुझे एक फसादी ने बांध लिया और अपने घर की ओर चला। जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में कुछ गांव पड़ते थे। यहाँ पर कुछ एक दूसरी ओर से फसादी आगे बढ़े। उस बिचारे ने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा लेकिन किसी ने एक न सुनी और उसका सफाया हो गया और मैं एक मौलवी साहब के हिस्से में आया। रास्ते में मैंने मौलवी साहब के आगे बहुत अनुनय विनय की। मैं

0: हजरत मुझे छोड़ दीजिए। मौलवी, यह कैसे हो सकता है? तुम माले गनीमत हो।
1: मैं हुजूर, मैं माले गनीमत नहीं हूँ। गनीमत यह है कि मैं एक गधा हूँ, वरना अब तक मारा गया होता।
0: मौलवी ने कहा, अच्छा यह बताओ, तुम हिंदू हो या मुसलमान?
1: फिर हम फैसला करेंगे।
2: मैं ठीक ठीक तो कह रहा हूँ, न मैं मुसलमान हूँ न मैं हिंदू हूँ, मैं तो गधा हूँ।
0: मौलवी ने कहा, तू बहुत बदमाश मालूम होता है, हम घर जाकर तुझे ठीक करेंगे।
1: मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के बाहर एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं भीतर चले गए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

घरों में भी थोड़े दिनों में ऐसे दरवाजे लग जाए, फिर लोग खिड़कियों से कूदकर घरों में प्रवेश किया करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ आरजे अंजलि के साथ।

दिल्ली में नई दिल्ली है और नई दिल्ली में कन्नौज प्लेस है। कन्नौज प्लेस बड़ी सुंदर जगह है। शाम के समय मैंने देखा कि लोग लोहे के गधों पर सवार होकर इसकी गोल सड़कों पर घूम रहे हैं। यह लोहे का गधा हमसे तेज भाग सकता है परंतु हमारी तरह आवाज नहीं निकाल सकता। यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को भेड़ की खाल के बालों के कपड़े पहनते हुए देखा है। स्त्री अपने मुंह और नाखून रंगती है और अपने बालों को इस प्रकार ऊंचा करके बांधती है कि दूर से वो बिल्कुल गधे के कान मालूम होते हैं। अर्थात इन लोगों को गधे बनने का कितना शौक है यह आज मालूम हुआ। कन्नौज प्लेस से टहलता हुआ मैं इंडिया गेट चला गया। यही चारों ओर बड़ी सुंदर घास बिछी थी और उसकी धूप तो अत्यंत स्वादिष्ट थी। मैं दो तीन दिन से तो भूखा था ही, बड़े मजे से मुंह मार मार कर चलने लगा। इतने में एक जोर का डंडा मेरी पीठ पर पड़ा। मैंने घबरा कर देखा, एक पुलिस का सिपाही क्रोध भरे स्वर में कह रहा था,

0: ये कमबख्त गधा यहाँ कैसे घुसा?
1: मैंने पलट कर कहा, क्यों भाई, क्या गधों को नई दिल्ली में आने की मनाई है? मुझे बोलता देखकर वह सटपटा गया। शायद उसने आज तक किसी गधे को बोलते नहीं सुना था। फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका आश्चर्य कुछ कम हुआ तो मुझे रस्सी से खींचकर थाने ले गया। थाने में ले जाकर उसने मुझे कांस्टेबल के सामने खड़ा कर दिया। हेड कांस्टेबल ने बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाए हो रामसी?
0: रामसी ने कहा, हुजूर, यह एक गधा है।
1: गधा तो है, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो?
0: हुजूर, यह इंडिया गेट पर घास चर रहा था।
1: अरे, घास चर रहा था तो क्या हुआ, तुम्हारी बुद्धि तो कहीं घास चरने नहीं चली गई। इसे यहाँ क्यों लाए हो?
0: ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर देते। इस बेजबान जानवर को थाने में लाने की क्या जरूरत थी?
1: रामसी ने रुकते रुकते मेरी और विजय दृष्टि से देखकर कहा, हुजूर, यह बेजबान नहीं है, यह बोलता है।
0: अब की हेड कांस्टेबल बहुत हैरान हुआ, लेकिन पहले तो उसे विश्वास न आया, फिर बोला, रामसी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
1: नहीं नहीं, यह बिल्कुल ठीक कहता है हेड कांस्टेबल साहब, मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आज अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

हेड कांस्टेबल अपनी सीट से उछला, मानो उसे कोई भूत देख लिया हो। वास्तव में उसका आश्चर्य अनुचित भी नहीं था, क्योंकि नई दिल्ली में ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो इंसान होकर गधों की तरह बातें करते हो, लेकिन एक ऐसा गधा जो गधा होकर इंसानों की तरह बातें करे, हेड कांस्टेबल ने आज तक देखा या सुना नहीं था। इसलिए बेचारा चकरा गया। उसके समझ में न आया कि क्या करे। आखिर सोच सोच कर उसने रोजनामचा खोला और रपट दर्ज करने लगा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम? गधा। बाप का नाम? गधा। दादा का नाम? गधा। यह क्या बकवास है, हेड कांस्टेबल ने क्रोध पूर्वक कहा। सबका एक ही नाम है, यह कैसे हो सकता है? अब मुझे देखो, मेरा नाम ज्योति सिंह है, मेरे बाप का नाम प्यारे लाल था, मेरे दादा का नाम जीवन दास था, हमारे यहाँ नाम बदलते रहते हैं। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, ज्योति से मुझे संदेह की नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, सच कहता हूँ कि हमारे यहाँ नाम नहीं बदलते। जो बाप का नाम होता है वही बेटे का और वही पोते का। इससे क्या लाभ, ज्योति सिंह ने पूछा। इससे वंशावली मिलाने में सुविधा होती है। उदाहरण स्वरूप, क्या आप मुझे अपने परदादा के परदादा का नाम बता सकते हैं? मैंने ज्योति सिंह से पूछा। नहीं, ज्योति सिंह ने अफसोस प्रकट किया, मगर मैं बता सकता हूँ। आपके यहाँ वह आदमी बड़ा खानदानी समझा जाता है जो आज के 400, 600, 800, 1600 साल पहले अपने पुरखे का नाम बता सके। देखिए, मैं आपको आज से 1600 क्या 16 लाख साल पहले के अपने पुरखे का नाम बता सकता हूँ, श्री गधा। बोलिए, फिर क्या हम गधे आपसे बेहतर खानदान के हुए या नहीं? ज्योतिषी ने बड़े ध्यान से मेरी ओर देखा, उसका संदेह और बढ़ गया। उसे धीमे स्वर में रामसी के कान में कानाफूसी करते हुए कहा, मुझे यह शख्स बड़ा खतरनाक मालूम होता है, हो ना हो यह कोई विदेशी जासूस है जो गधे के लिबास में नई दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। रामसी ने कहा, हुजूर मैं तो समझता हूँ इसकी खाल उतरवा कर देखना चाहिए, भीतर से खुफिया जासूस निकल आएगा, फिर हम इसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। ज्योति सिंह ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन इसके लिए सब इंस्पेक्टर चानन राम की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है, चलो इसे उनके सामने ले चले। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा, जो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने। कहीं जाइएगा नहीं, यहीं जुड़े रहिए मेरे साथ मस्त।

0: कान में भी कुछ भनक पड़ गई थी, लेकिन मैं कान लपेटे चुप रहा और उन दोनों के साथ भीतर के कमरे में सब इंस्पेक्टर चानन राम के सामने चला। चानन राम की मूछें बिच्छू के डंक की तरह खड़ी थी और उसका सुर्ख चेहरा हर समय तमतमाया रहता था। चानन राम को आज तक किसी ने हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, इसलिए लोग उसे एक योग्य पुलिस अफसर समझते थे। चानन राम ने उसकी पूरी बात सुनकर मेरी ओर घूर कर देखा और कहा,
1: तो तुम पाकिस्तानी के जासूस हो।
0: मैं चुप रहा। चानन राम ने जोर से मेज में मुक्का मारकर कहा,
1: समझ गया, तुम रूस के एजेंट हो।
0: मैं फिर चुप रहा। चानन राम ने दांत पीसते हुए कहा,
1: कमबख्त, बदमाश, कम्युनिस्ट, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, वरना जल्दी बताओ तुम कौन हो।
0: यह कहकर चानन राम मुझे मुक्को लातों और ठोकरों से मारने लगा। मारते मारते जब वह बिल्कुल बेदम हो गया तो मैंने जोर से एक दर्द भरी आवाज की। आवाज करते ही वह रुक गया और पहले मेरी और आश्चर्य से देखकर और फिर अत्यंत क्रोध से ज्योतिषी और राम सी की ओर देखकर बोला,
1: अरे यह तो बिल्कुल गधा है, और तुम कहते हो यह कोई विदेशी जासूस है, तुम मुझसे मजाक करते हो, मैं अभी तुमको डिसमिस करता हूँ।
0: राम सी और ज्योतिषी दोनों भय से थरथर

0: कांपने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हुजूर अभी यह बाहर के कमरे में बोल रहा था, साफ साफ बोल रहा था, बिल्कुल इंसानों की तरह।
1: तुमने सपना देखा होगा या काम करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। जाओ इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ और कांजी हाउस में बंद कर दो। अगर 3-4 दिन में इसका मालिक न आए तो नीलाम कर देना।
0: मैं खुशी खुशी बाहर आया, मेरी चाल काम कर गई। अगर मैं भूलता तो वे लोग निश्चय ही मेरी खाल उधेड़ कर देखते कि भीतर कौन है। इसके बाद 3-4 दिन तो क्या, एक हफ्ते तक कोई मालिक न आया, फिर मुझे नीलाम कर दिया। अब के मुझे रामू धोबी ने खरीद लिया, जो यमुना पार कृष्णनगर में रहता था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर गधे की आत्मकथा, जो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तो जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

बाक्का पालन पुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।